अपने जीवन नूं सफल करन दा जतन कर रहे आ। ऐसा समा ऐसी सत संगत सतवां दी रहमत कृपा सदका प्राप्त होंदी है। गरीब नवाज ने मेहर कीती

0: एक बार फिर तो संत बाबा जीत सिंह जी जौलां वालियां दा बहुत बहुत धन्नवाद। हुण श्री आनंद साहिब साहिब जी दे पाठ ते दीवाना दी समाप्ति दी अरदास होवेगी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: रामकली महला तीजा, आनंद एक ओंकार। सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुर ता पाया सहज सेती। मन वजियां वाधाइयां, राग रतन परवार परियां, शब्द गावन आईयां। शब्दो ता गावो हरी केरा, मन जिनी वसाया,

सतनाम श्री वाहेगुरु जी तुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई दयाल पुरख मेहरबाना हर नानक सच बखाना

गुण गावहो गोपाल राय रहा वड्डे भाग पेटे गुरुदेवा कोट पराध मिटे हर सेवा

0: सागर दरिया साधु संगे निरपो नाम जपो हर रंगे पर धन दोग च पाप न फेरे जम जंदा न आवे नेड़े तृष्णा अगन प्रभ आब जाय नानक उदरे प्रवसर नाई तृष्णा अगन प्रभ आब जाय नानक उदरे प्रभसर नाई वाहे गुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की
1: सतनाम श्री वाहेगुरु जी सिर मस्तक रख्या पार ब्रह्मं हस्त काया रख्या परमेश्वर है आत्म रख्या गोपाल स्वामी तन चरण रख्या जगदीश्वर है सर्व रख्या गुरुदयाल है पै दुख विनाशन है भगत वचल अनाथ नाथे शरण नानक पुरख अच्युत है कोर दोख्यं अनक हत्यं जन्म दारिद्रन महाभिख्यादन मिटंत सगल समरंथ हर नाम नानक जैसे पावक काष्ट पस्मं क्रोत सोरट महला पंजवा गुर का शब्द रखवारे चौकी चौह गिरद हमारे राम नाम मन लागा जम लजाए कर भागा प्रभ जी तू मेरो सुखदाता बंधन काट करे मन निर्मल पूरन पुरख विधाता रहाओ नानक प्रभ अविनाशी ताकि सेव न बिरथी जासी अनद करहे तेरे दासा जब पूरन होई आसा बिलावल महला पंजवा ताती वाऊ न लगई पार ब्रह्म सरनाई चौ गिरद हमारे रामकार दुख लगे न पाई सदगुर पूरा पहिटिया जन बनत बनाई राम नाम ओखद दिया एकाद बुलाई रहाओ राख लिए तन रखनहार सब ब्याध मिटाई कहो नानक कृपा पही प्रभ पहे सहाई सलोक जय साधु गोविंद भजन कीर्तन नानक नीत ना हो ना तू न छुट है निकट न जाइयो दूत सलोक महला पंजवा मन मह चितवो चितवनी उदम करो उठ नीत हर कीर्तन का आहरो हर देहो नानक के मीत सोहेला राग गौरी दीप की महला पहला एक ओवंकार सदगुर प्रसाद जय कर कीरत आख्य करते का होई बीचारो तित कर गावहो सोहिला सिवर हो सृजनहारो तुम गावहो मेरे निरपो का सोहिला हो वारी जत सोहिला सदा सुख होए रहाओ नित नित जियड़ संभालियन देखेगा देवन हार तेरे दाने कीमत ना पवै तिस दाते कवन सुमार संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल देहु सजन असी सरिया जियो होवै साहिब सो मेल कर कर एहो पहुचा सदड़े नित पवन सदन हारा सिमरिय नानक से देहे आवन राग आसा महला पहला छे कर छे गुर छे उपदेश गुर गुर एको वेसनेक बाबा जय कर करते कीरत होए सो कर राख वडाई तोय रहाओ विश्वे तस्या कन्या पहरा थकती वारी माहो होवा सूरज एको रुत अनेक नानक करते के केते वेस राग तनासरी महला पहला गगन में थाल रव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती धूप मन आनरो पवन चमरो करे सगल बन राय फूलंत ज्योति कैसी आरती होए पहु खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत तेरी रहाओ सहस्तम नयन नन नयन है तुहि को सहस मूरत नन एक तोही सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन सहस्तव गंध इव चलत मोही सब मह ज्योत ज्योत है सोए तिस दै चानन सब मह चानन होए गुर साखी ज्योत प्रगट होए ज्योतिस पावे सो आरती होए हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो अनदनो मोहे आही प्यासा कृपा जल देहे नानक सारंग को होए जाते तेरा नाये वासा राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बहु पर्या मिल साधु खंडल खंडा हे पूरब लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडा हे कर साधु अंजुलि पुनवडा हे कर दंडोत पुनवडा हे रहाओ साकत हर रस साध न जानिया तन अंतर हो मैं खंडा हे ज्यो ज्यो चलह चुबै दुख पावहे जमकाल सहे सिर डंडा हे हर जन हर हर नाम समाने, दुख जन्म मरण पवखंडाहे, अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर, बहु शोभ खंड ब्रह्मंडाहे, हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे, हर राख राख वडवडाहे, जन नानक नाम आधार टेक है, हर नामे ही सुख मंडाहे, राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, करो बेनंती सुनो मेरे मीता, संत टहल की बेला, ईहा खाट चलो हर लाहा, आ गए बसन सुहेला, औद कटै दिन सरह नारे, मन गुरमिल काज सवारे रहाओ, एहो संसार विकार संसे मह, तरियो ब्रह्म ज्ञानी, जिसहे जगाए पिया वै एहो रस, अकथ कथा तिन जानी, जाको आए सुई बिहा जहो, हर गुरते मनह बसेरा, निज कर महल पावहु सुख सहजे, बहर न

ही सुमार। धौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जिन सूत जे को बुझै हुवै सचियार। धवलै उपर केता भार धरती होर परै होर होर तिस ते भार तलै कवन जोर। जी जात रंगा के नाव सबना लिखिया बुढ़ी कलाम। एहो लेखा लिख जाने कोए लेखा लिखिया केता होए केता तान। सुवाले हो रूप केते दात जाने कौन कूत कीता पसाओ एको कवाओ। तिस्ते होए लख दरियाओ कुदरत कवन कहा विचार। वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावै साई भली कार। तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख भाओ। असंख पूजा असंख तप ताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ। असंख जोग मन रह है उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार। असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह भख सार। असंख मोन लिव लाए तार कुदरत कवन कहा विचार। वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावै साई भली कार। तू सदा सलामत निरंकार असंख मूरख अंध घोर असंख चोर हराम खोर। असंख अमर कर जाहे जोर असंख गाल वड हत्या कमाहे। असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे। असंख मलेच्छ माल भख खाहे असंख निंदक सिर करहै भार। नानक नीच कहै विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावै साई भली कार। तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लोह। असंख कहै सिर भार होए अखरी नाम अखरी सालाह। अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखन बोलन बाण। अखरा सिर संजोग वखान जिन एह लिखे तिस सिर नाहे। जिव फुरमाए तिव तिव पाहे जेता कीता तेता नाओ। विन नावै नाही को थाओ कुदरत कवन कहा विचार। वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावै साई भली कार। तू सदा सलामत निरंकार भरियै हथ पैर तन देह। पानी धोतै उत्तर सो खेह मूत पलीते कपड़ होए। दे साबून लइयै ओह धोए भरियै मत पापा कै संग। ओह धोपै नावै कै रंग उन्नी पापी आखन नाहे। कर कर करना लिख लै जाहो आपे बीज आपे ही खाहो। नानक हुक्मी आवहो जाहो तीर्थ तप दया दत दान। जे को पावै तिल का मान सुनिया मन्या मन कीता भाओ। अंतरगत तीर्थ मल नाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोए। वेन गुण कीते भगत ना होए स्वस्त आथ बाणी बरमाओ। सत सुहान सदा मन चाओ कवन सो वेला वक्त कवन। कवन थित कवन वार कवन से रुति माहो कवन। जित हुआ आकार वेल ना पाया पंडती जे होवै लेख पुराण। वक्त ना पायो कादिया जे लिखन लेख कुरान। थित वार ना जोगी जाने रुत माहो ना कोई। जा करता सिर ठीकाओ साजे आपे जाने सोई। केव कर आखा केव सालाही क्यों वरनी केव जाना। नानक आखन सब को आखै एक दू एक सियाना। वड्डा साहिब।

कूड़ै ठीस, आखन जोर चुप्पै नह जोर, जोर ना मंगन देन ना जोर, जोर ना जीवन मरण नह जोर, जोर ना राज माल मन सोर, जोर ना सुरते ज्ञान विचार, जोर ना जुगते छुट्टै संसार, जिस हाथ जोर कर वेखै सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए, राती रुते थिति वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिन के नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथै सोहन पंच परवान, नदरी कर्म पवै निशान, कच पकाई उथै पाए, नानक गया जापै जाए, धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का आखो कर्म, केते पवन पानी वै संतर, केते कान महेश, केते बरमे घाड़त घड़िया है, रूप रंग के वेश, केतिया कर्म भूमि मेर केते, केते तू उपदेश, केते इंद चंद सूर केते, केते मंडल देश, केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते, केते देवी वेश, केते देव दानव मुन केते, केते रतन समुंद, केतिया खानी केतिया बाणी, केते पात नरिंद, केतिया सुरती सेवक केते, नानक अंत ना अंत, ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड, तिथै नाद विनोद कोड आनंद।

0: प्रभु के सिमरन हर गुण बानी,
1: प्रभु के सिमरन निचल आसन,
0: प्रभु के सिमरन अनहद चुनकार, सिमरे से जन जिनको प्रमया, हर सिमरन कर भक्त प्रगटाए, हर सिमरन पै सिद्ध जति दाते,
1: हर सिमरन
0: सिमरन तारी सब तरना,

डराए, जे को जन्म मरण ते डराए, जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा, सगल पुरख मैं।

जय प्रसाद तारू पर सुख बसाय, जय प्रसाद पीवे शीतल जला, जय प्रसाद पोगे सवरसा, दीने हस्त पाव का नेत्र रसना।

मिथ्या तन धन कुटुंब सबाया मिथ्या राज जौवन धन माल मिथ्या रथ हस्ती असबत्रा मिथ्या त्रो मोह अपमान अस्तर भगत साध की सरन मिथ्या श्रवण पर निंदा सुने मिथ्या नेत्र पे

रहतवर कछवर कमावत जाननहार प्रभु प्रवीण अवर उपदेश है अपना करे जिसके अंतर बसे निरंकार जो तम्पाने तिन प्रव जाता

जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसना जय प्रसाद रंग रस भोग जय प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे जय प्रसाद सुख से सोई जय जय प्रसाद तू सबको माने जय प्रसाद तेरे रहता तरम प्रभ जी जो पदर गह मान पावे जय प्रसाद आरो कंचन दे जय प्रसाद तेरा ओला रहत जय प्रसाद तेरे सगल छिदर ठाके जय प्रसाद तुझको ना पहुंचे जय प्रसाद पाई दुर्लभ दे जय प्रसाद आपू

0: के संग दृढ़ सब धर्म, साथ के संग पाए नाम निधान,
1: साधु के
0: साथ के संग सब कुल धारा,

साथ के संग सर्वथान गम साथ के संग नहीं कचकाल साथ के संग कलयुग कतहर है साथ के संग

0: तित लगना
1: जाने करते ही जाने करता रचना
0: कई कोट सिद्ध जति जोगी
1: कई कोट राजे रस भोगी
0: कई कोट पंखी सर्प पाए
1: कई कोट पाथर वृक्ष निपजाए
0: कई कोट पवन पानी बैसंतर
1: कई कोट देश भूमंडल
0: कई कोट शशि अर सूर्य नक्षत्र
1: कई कोट देव दाने इंद्र से शतर
0: सगल समग्र।

0: निराहार निर्वैर सुखदाई अनक भगत बंधन नित कराए सत बलियारी सतगुरे अपने
1: नाने।

0: अंग है कि हम तो अपंग है।
1: मद पार चंत प्रसाद मन मन प्रणाम गुण गान मदाम अर पर अगंज हर नर पर पांज
0: अन गण प्रणाम मन मन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड
1: अनुभव अनास मन मन प्रकाश गुण।

0: कहे नानक तू सदा अगम है तेरा अंत ना पाया।
1: अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया।
0: पाया अमृत गुर कृपा कीनी सच्चा मन वसाया।
1: जी जन सब तुद पाए एक वेख परसनाया।
0: लाभ लोभ अंकार चुका सतगुरु।

0: मन रस सब विसरे जा हर वसे मन आए।
1: ये शरीर मेरा हर तुम मैं जोत रखी ता तू जग में आया।
0: हर जोत रखी तुद विच ता तू जग में आया।
1: हर आपे माता आपे पिता जिन जियो पाए जग दिखाया।
0: गुर प्रसादी बुझिया ता चलत हुआ चलत नदरी आया।
1: कहे नानक सृष्टि का मूल रचिया जोत राखी ता तू जग में आया।
0: मान चाओ पया प्रभ आगम सुनिया।

0: जो किश करे सो भला कर मानिए हिकमत हुक्म चुकाइए
1: जाके प्रेम पदार्थ पाइए तौ जानी जित लाइए
0: सहो कहे सो कीजे तन मन दीजे ऐसा परम ललाइए
1: कहे सुहागनी पैने इन बाती सो पाइए
0: आप गवाइए ता सोह पाइए और कैसी चतुराई
1: सो नदर कर देखे सो देख कामन नद पाई
0: अपने कंत प्यारी सा सुहागन नानक सा सबराई
1: ऐसे रंग राती सहज की माती एन सपाए समानी
0: सुंदर साए स्वरूप बिचखण कै

रतना रतन पदार्थ बहु सागर भरिया राम बाणी गुरबाणी लागे तिन हाथ चढ़िया राम गुरबाणी लागे तिन हाथ चढ़िया निर्मूलक रतन अपारा हर हर नाम अतोलक पाया तेरी भगत भरे भंडारा समुंद विरोल शरीर हम देखिया

अहन सहज सुबाए दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख जाए सतनाम वाहे गुरु साहेब जी।

राग एक संग पंच बरंगन संग लप है अठ नंदन प्रथम राग पहरा वै करही पंच राग नी संग उचरही प्रथम पहरवी बिलावली पुनिया की गा वह बंगली पुनस लिखी की पही बारी ए पहरव की पाचाओ नारी पंचम हरख दिसाख सुनाव है बंगालम मधमाधव गाव है ललत बिलावल गाव ही अपनी अपनी पांत अष्ट पुत्र भैरव की गाव गायन पात्र द्वितीया मालक सकालप है संग रागनी पाचौ थाप है गूंड करी अरदेव गंधारी गंधारी सी हुति उचारी तनाश्री पाचौ गाई माल राग कौशक संगलाई मारु मस्त अंग में वारा प्रबल चंड कौशक उबारा खौखट औ पौरा नद गाई अष्ट माल कौशक संगलाई पुन आयो हिंडोल पंच नार संग अष्ट सुत उठ है तान कलोल गायन तार मिलाव ही ते लंगी देव करियाई बसंती संदूर सुहाई सरस अहिरी लै पार जा संगलाई पंच वार जा सुरमा नंद पास कर आए चंद्र बिंब मंगलन सुहाए सरस बान अवाह बिनोदा गावह सरस बसंत कमोदा अष्ट पुत्र मैं कहे सवारी पुन आई दीपक की बारी कछेली पट मंजरी टोडी कही अलाप का मोदी गुजरी संग दीपक के थाप।

लाभ है। सोरठ गोंड मलारी तुनी पुन गावे है, आसा गुन गुनी उचे सुर सुह पुन कीनी, मेघ राग स्व पंचो चीनी, बैरा धर गज धर के दारा, जबली धार नट आओ जल धारा।

लो जी वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु जी। अरदास एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लैन ते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासै हुई सहाय। अर्जन हर गोविंदनो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिस जिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरे अहंकार नाव निध्यावै ताए सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। दसम पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके बोलो जी। पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अंडिट कीता तिन्हां प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान तरके खालसा जी बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां धर्म हेत शीश दित्ते बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां चरखियां ते चढ़े आरिया नाल चिराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसा सवासा नाल निवाही तिन्हां दी कमाई दा ध्यान तरके खालसा जी बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां धर्म हे शीश दित्ते बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां चरखियां ते चढ़े आरिया नाल चिराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसा सवासा नाल निवाही तिन्हां दी कमाई दा ध्यान तरके खालसा जी बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान तरके बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेते आवे चेते आवन का सदका सर्व सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रच्छिया रियायत देख तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जी श्री साहिब जी सहाय। खालसे जी के बोल वाले बोलो जी। सिखा नु सिखी दान केश दान रहत दान वेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान श्री अमृत सर जी दे इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उची मत पत दा राखा वाहिगुरु जी। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दा तार जीओ श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरद्वारिया गुरधामां दे जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया है तिन्हां दे खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो। हे निमाणियां दे माण नितानियां दे तान न्योटियां दी ओट सच्चे पिता धन धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी दे पावन पवित्र चरण कमलां विच अरदास बेनती जोदड़ी है दातार पिता जीओ। धन धन धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज वल्लों तखत श्री दमदमा साहिब जी धरती दे उपर चरण पाउंदिआं भाग लाउंदिआं होइआं अनेकां खेडां बरताईआं पातशाह जीओ। आप जी ने तखत श्री दमदमा साहिब जी विखे 1606 ईस्वी दे विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह जी नूं संपूर्ण करदिआं होइआं महाराज सच्चे पातशाह जी समागम करवाए। भाई साहब भाई मनी सिंह साहिब जी होरां नूं बाबा दीप सिंह साहिब जी होरां नूं लिखारी ला करके आद ग्रंथ साहिब जी दी संपूर्णता करवाई पातशाह जी इतिहास विच बचन ने। अब दरबार दमदमा है जहां तंबू लगवाए कै गुर तहां मनी सिंह को लिखन बिठाए कै गुरु नानक का ध्यान तराए कै नित प्रत गुरु उचारी जैसे बाणी लिखी मनी सिंह तैसे दे महाबाका अनुसार पातशाह जीओ। आप जी दे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे संपूर्णता दिवस नूं मुख रखदिआं होइआं नगर तखत श्री दमदमा साहिब तलवंडी साबो बठिंडा दियां समुचियां सिख संगतां वल्लों कैलगरी दियां समूह सिखतां दे सहयोग नाल दातार पिता जीओ
आप जी दे बख्शे हुए उद्दम दी बदौलत उद्दम मत प्रभ अंतर जामी ज्यों प्रेरह त्यों करना आप जी दी श्रेष्ठ उद्दम और प्रेरणा दा सदका पिछले कई सालां तों पातशाह जी इन्हां मुबारक अस्थानां दे उपर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे संपूर्णता समागम करवाए जांदे ने। इसे तरह समुचियां सिख संगतां वल्लों एकत्र हो करके परसों रोज तों गुरद्वारा दसमेश कल्चर सेंटर जी दे पावन अस्थानां ते तुरकी बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई रब्बी बाणी दे श्री अखंड पाठ साहिब प्रारंभ करवाए सन। दातार पिता जी आप जी ने बेअंत कृपा कीती है, आप जी ने तरस कीता है, एको अंकार तो लैके 18-10-20 तक बाणी नूं शुद्ध स्पष्ट श्रद्धा दे नाल पढ़दियां होया मर्यादा मुताबक हुण भोग पए ने। पातशाह जी ओ पाठी सिंघां दे कोलों पाठ करदियां कोलों सेवादारां कोलों हजूरी विच विचरदियां मन बाणी शरीर करके होइयां बहुत सारियां गलतियां खिमा करनियां अगे वास्ते शुद्ध पाठ शुद्ध बाणी पढ़न दा कथा कीर्तन करन दा सतगुरु पातशाह जी कृपा करनी रहमत करनी समुचियां तलवंडी साबो तगर तिखी तखत श्री दमदमा साहिब बठिंडे दियां सिख संगतां दे सिर दे उपर मेहर दा हथ रखना सारे परिवारां नूं महाराज अपने चरणां नाल जोड़ के रखना गुरसिखी जीवन नाम दियां दातां बख्शिश करनियां कारोबारां विच वाधे करने दिन दुगुणी रात चौगुणी तरक्की करनी सभनां दे परिवारां विच खुशियां बख्शिश करनियां सभनां नूं प्यार इतफाक चढ़दियां कलां बख्शिश करनियां सभनां दे सिर ते मेहर दा हथ रख के अपने दर कर दियां सेवावां लैंदे रहना। इसे तरह महाराज तरस करना कृपा करनी अगां वास्ते भी ये जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे संपूर्णता दिवस नूं मनाउण दे आप जी दी कृपा दे नाल यतन कीते गए ने कृपा रखनी इसे तरह आप जी ने सिख संगतां दे पासों ये सेवा लैंदे रहना महाराज सच्चे पातशाह जी सरबत संगत दियां हाजरियां भेटावां चलिया चलिया कदम लेखे विच लाउणा गुरमत अनुसार इच्छावां पूरियां करनियां सभनां दे परिवारां च खुशियां बख्शिश करनियां बच्चियां ते कृपा करनी विद्या दा दान लम्मी आजू माता पिता दे आग्याकारी बनाउणा पातशाह जी इन्हां खुशियां नूं मुख रखदियां होइआं सुंदर रुमाला साहिब आप जी नूं भेंट कीते ने जो आप जी दे अंग लाए गए ने सेवकां दे लोक परलोक विच पड़दे कज्जणे पातशाह जी बख्शे हुए भंडारियां दे विचों महाराज सच्चे पातशाह जी पंचामत कड़ा प्रसाद दियां देगां सजा करके आप जी दी पावन हजूरी विच हाजर ने आनंद साहिब जी दियां 6 पौड़ियां जी की अरदास अखर वाधा घाटा भुल चुक माफ करनी सरबत दे कारज रास करने सारियां सिख संगतां दे सिर ते करो मेहर दा हथ पातशाह जी आप अपने पावन इलाही दरगाही हुक्मनामा साहिब जी दी दात बख्शिश करके संगतां नूं किरतार

जुगो जुग अटल चबर शतर तख्त दे मालक हाजरा हजूर जहरा जहूर सर्ब कला भरपूर गुरता गद्दी ते विराजमान पावन तख्त साहिब जी विखे प्रकाशमान प्रतख ते समरथ सतगुरु शब्द गुरु शब्द अवतार धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी दे अंदर सजे हुए सुंदर दरबार अंदर गुरुद्वारा दसमेस कल्चर सेंटर जी दे पावन अस्थाना ते ऐतवार दे विशेष दीवाना दे अंदर जुड़ बैठे समूह माई भाई सतसंगी जनो जिमें कि दस तो पहला महान विद्वान भाई हरमित्र सिंह जी गुरुद्वारा मंजी साहिब वालियां पासों आप जी ने गुरमत विचारां सरवण कीतियां ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की बाणी की संपादना का प्रसंग श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पहले प्रकाश के संबंध में गुरता गद्दी के संबंध में और संपूर्णता दिवस में समर्पित उन्होंने आप जी के

0: जोर अंग्रेज अड्डी चोटी वाला लाउंदे ने, अड्डी चोटी वाला लाउंदे ने,
1: कौमी परवाने पर सिर ना चुकाउंदे ने, सिर ना चुकाउंदे ने।

कारु, रोवण सगल बेकारु, गाफल संसारु, माया कारण रोवै, चंगा मंदा किछ सूझै नाही, एह तन ए वै खोवै, ऐथे आया सब को जासी, कूड़ करहो अहंकारु, नानक रुन्ना बाबा जानियै।

सेवहो साहिब समर्थ अपना पंथ सोहेला आगे होए पंथ सोहेल जावहु ता फल पावहु आगे मिले वडाई भेटै स्यों जावहु सच समावहु।

है साची माण, दरगाह माण पाव है, पत सिंह जाव है, आगे दुख न लागे, कर एक ते आव है ता फल पाव है, जित सेवै पहु पागै।

ज्यों सुन्या कर काओ जमन मरण वड्डा वे छोड़ा बिनसै जग सुबाई लभ धंद है माया जगत भुलाया काल खड़ा रुआई बाबा आवो भाई हो गल मिलह।

दुख विसारण हारा। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर

हाँ तुद बिन अवर ना जाना, तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख वखाना, जो सेव है जो सेव है तुद जी, जन नानक तिन कुर्बाना, हर त्याव है हर त्याव है तुद जी, से जन जुग में सुखवासी, से मुक्त पए जिन हर त्याया जी, तिन तूटी जम की फासी, जिन हर निरपौ त्याया जी, तिनका पौ सब गवासी, जिन सेवया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी, से तन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी, तेरी भगत भंडार जी, परे बेअंत बेअंता, तेरे भगत सलाहन तुद जी।

तू निःचल करता सोई, तुद आपे भावै सोई वरतै जी। तू आपे करहै सो होई, तुद आपे सृष्ट सब पाई जी। तुद आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावै करते के जी। जो सब सह का जान होई, आसा महला चौथा।

तू सबनी त्याया जिसनो कृपा करहै तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मन मुख गवाया।

हर गुण सद ही आख वखाण, जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर ना कोए। तू कर कर वेख जान है सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट हो।

बियले मन एक न चेत समूढ़ मना हर विसरत तेरे गुण गलिया रहाओ ना हो जति सती नहीं पढ़या मूर्ख मुगदा जन्म पया प्रणवत नानक तिन की सरना जिन तू नाही विसरिया आसा महला पंजवा।

पर हमरे दुष्ट सब तुम कावहो, आप हाथ दे मोहे बचावहो। सुखी बसे मोर परिवार, सेवक सिख सभ करतारा, मोर अच्छा निज

दीन बंध दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर दास कंता। काल पाए ब्रह्मा बाप तरा, काल पाए शिव जू।

सेवकन को सब गुण सुख दियो, सतरन को पल मोह बद कियो, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, कीटी ते कुंचर असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी।

आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत पेन पेन तुहे तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, केह विध सजा प्रथम संसार, एक रूप अनूप स्वरूपा, अरंक पयो राव कही पूपा, अंडज जेरज सेतज कीनी।

एकैठा सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख्य उबार असिख्य संगरो दुष्ट जिते उठ वत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस तुज तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुखित होए मरे।

निकट नह एह रक्षा हुए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टर तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो ताके ताप तनक मह हर हो रिद सिद्ध कर्मो सब हुई दुष्ट चा

खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाकुर तुम पह अरदास, जियो पिंड सब तेरी, तुम मात पिता हम।

श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान, चौकिया झंडे बुंगे जुगो जुग अटल, धर्म का जयकार बोलो जी।

Ouais. Satnam Sri Vaheguru Sahib Ji Jeta Samund Sagar Neer Parya Tete Augun Hamare दया करहो किछ मेहर उपावहो डुबदे पत्थर तारे मैं मूर्ख की केतक बात है कोट पराधी तरिया रे गुरु नानक

सेवक प्रभ अपने जिन मन की इच्छ पुजाई नानक दास ताके बलहारे जिन पूरन पैज रखाई कर सेवा सेवक प्रभ अपने